बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चौक लग अपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमे उपचार सेवा लेह अनुरोध करती।

सत्कार पॉलिक्लिनिक से देजैना सेवा, ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाट जोड़नी सेवा, टूटल हाट जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली, गुम्बा रोड, गोलचोक लगह, टीकापुर कैलाली। फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-42-72-59।

0: तहरा राजा जी का दिलवा टूट जाई, तहरा राजा जी का दिलवा टूट जाई।
1: उफ बल्ल घरक भीता निखोरैदा
2: मुस्कान रिथाई घरक भीता आमी निके निवराइ छ कि का खेतो म सखारन कला मिनी ले जाय पना रह
1: आबो मराइदा दांती बादा
2: ले ले वही मिनी बना कर भेजी है तू लैदा दियस ना।
1: हाँ बैठा दाई। ओहो हेरो यहाँ भिटा मत बिला को बा माटी ने कबर दिए पर का हाँ सब दू अय्या दाई सब का डरल
2: दाई खै खै कहाँ काटल छाई
1: यहाँ दाई ये दाई ना जम का डरल
2: अरे लेव हाली क्यों बाटो मचे मुस्कान मत सब का डरलस लेव हाली
3: काबिल काकी काबिल
2: हेरो ना राकेश मुस्कान न सपुआ करलस कलप
3: ना त्याव काकी तो मुस्कान निया त्या का शांत होकर बैठो ना बेन काकी मुस्कान न स्वास का न सुटाई हलचल नी का राखना
2: बैठा भैया मुस्कान छाई स्वास का सुटो ता
1: बैठा
3: ओ काकी मुस्कान घलक लुगा गर गहना निकब जैना मेकअप फाफसर बना रिटा वो हाथक चुड़िया की निकाल दी था वाकर कटला हाथ भर नहीं चला था
2: बैठा भैया सबो कटला था और आंदर पांदर चीर का इंजेक्शन ने तान का अथवा मुंह ले सूझ का बीस पो निकले ना हो कि
3: नहीं नहीं काकी सबो कटला घाव आंदर पांदर कटना डगना चूसना काम करा नहीं हुई वो कुछ खवाई पियाई के नहीं हुई पानी के नहीं बुझली
2: उसी नो कल से धर मेरा लान था वही निटार था वाकर सबो कटला था मर लगा दियो डना नानू
3: उफे नहीं हुई काकी घरेलू उपचार जस्ता की झरबैरा जंगली खरबुटी और जड़ी बुटी फिर प्रयोग कराने हुई बुझली
2: बुझनु नानु बुझनु
3: बिना काकी रामेश्वरा मोटरसाइकिल लेखा आए कही झट्टा से झट्टा साधन खोज कर एंटी वेनम हिलक स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाई सेक जाई कल से मुस्कान होना झट्टा सुमर बनाई सेक जाई दादा आई अपना बेन ओटरा बिलासम हमार गांव से फोन एंटी वेनम केंद्र लगा पर था कही का स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी का वेबसाइट खोलती कर तुम्हें हाँ डाटा हम कह कर हेरा पुरा हाँ हो स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी वेबसाइट फे खुला हमार गांव से तो मिर्सहेक स्वास्थ्य संस्था में को सर्पदंशक उपचार कही जिना रही था हो वहाँ ले जाए पुरा मुस्कान होना
2: राकेश नानू मोटरसाइकिल लेकर रामेश नानू आ गई ला
3: लेव लेव लेव काकी मुस्कान हना निहिला का मोटरसाइकिल का सीटक बिच्चा में बैठा रही का झट्टा से झट्टा सर्पदंश उपचार केंद्र में पुगाई सेक जाए कला से मुस्कान हना बताई सेक जाए
2: बैठा बैठा याद करी सपवा डसल से मोटरसाइकिल स्वयं से भी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र में जाकर जान बचाई वहाँ कौन सवारी साधन उपलब्ध निहिलक अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी फोन पता लगाकर फोन में से सुझाव ली
4: मुस्याकल सापन से फिर सावधान रह पठा मोल सपो न जट्टी की छुना चलेना करनी हुई कबू काल मोल के खा समझन साफ फिर काट से ठा संभव हुई सम कटुया सपो फोटो खींच कर डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी ने देखाई सकल से हुक्र सपो विषाण अलग निरलग पहचान कई खा सही उपचार कर सहयोग उठा
2: यदि समय में उपचार कर से गई कल से सपो डसलक मन यहाँ बताई सक दी था वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फे कम कर से दिखा सपा दशलक मन यहाँ झट्ट से झट्ट उपचार केंद्र में ले जाई इहिले ऊ मन एक जिंदगी बचाए भारी मदद कर था भर पड़ना वो सही जानकारी लाग वो लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पत्ता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए से दिखा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़।

0: बाबू, ए बाबू, कल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
1: मैं नहीं जाऊँ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
0: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो, यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
1: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाय।
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुस्ता तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुस्त रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
0: मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च नवीकरण तथा नयाँ दर्ता बारे अत्यन्त जरुरी सूचना।
4: टीकापुर नगरपालिकाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 तोके बमोजिम उपचार बापत खर्च प्राप्त गरिरहेका लाभग्राही तथा नयाँ लाभग्राहीहरूले आर्थिक वर्ष 2083-84 उक्त उपचार बापत खर्च प्राप्त गर्नका निम्ति तपसिल बमोजिमका कागजात सहित यही श्रावण 5 गतेदेखि भाद्र 5 गतेसम्म लाभग्राही स्वयं वा निजको निवेदन सहित नजिकका हकदार उपस्थित भई आफ्नो परिचय पत्र नवीकरण तथा नयाँ दर्ता गराउनका लागि टीकापुर नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।
0: तपसिल
4: सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूको सकल नेपाली नागरिकता र 1 प्रति फोटोकपी
0: बैंकको सकल चेकबुक र 1 प्रति फोटोकपी
4: मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको हकमा नगरपालिकाले जारी गरेको अपाङ्गताको परिचय पत्र
0: नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रतिलिपि हालसालै खिचेको फोटो 2 प्रति
4: क्यान्सर रोगीहरूको हकमा 3-3 महिना भित्र निरन्तर निगरानीमा रहेको प्रमाण पत्र खुल्ने कागजात र वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र।
0: थप जानकारीका लागि जनस्वास्थ्य शाखाको फोन नम्बर 0915601122 सम्पर्क गर्नुहोला।
4: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, कहा कना हो, कहा कना हो। बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो, ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी राहत।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कपड़ा से गुड़ झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुंजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: उपभोक्ता वर्गमा टीकापुर नगरपालिकाको अनुरोध
5: आफूलाई आवश्यक औषधि खाद्यान्न पेय पदार्थ र अन्य सामानहरू खरिद गर्दा उपभोग्य मिति मूल्य सूची लेबल आदि हेरेर मात्र खरिद गरौं
4: आफूले खरिद गर्न लागेको सामानको उत्पादन भण्डारण वा बिक्री स्थलमा आवश्यक सरसफाई छ छैन हेरेर मात्र खरिद गरौं
5: जोखेर लिनुपर्ने सामानहरू खरिद गर्नु अघि ढक तराजुको अवस्था ठिक छ छैन हेरौं
4: वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा बिल बिजक लिने बानी बसालौं
5: सामानको उपभोग्य अवधि सकिएको भए वा पानीले भिजेको प्याकिङ सामानको प्याकेट फुटेको ओसिएको वा गुणस्तरहीन भए त्यस्तो सामान खरिद नगरौं
4: अखाद्य रंग वा मापदण्ड विपरीतका वस्तुहरूको मिसावट भएका खाद्य तथा पेय पदार्थहरू खरिद नगरौं
5: लेबल नभएको वा लेबलमा उत्पादकको नाम ठेगाना र वस्तुको ब्याज नम्बर तौल अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य उल्लेख नभएको प्याकिङ सामानहरू खरिद नगरौं
4: साथै उत्पादन मिति उपभोग्य मिति नभएको वा केरमेट भएको वा पुनः लेबलिङ गरेको वस्तु समेत प्रयोग नगरौं
5: आफ्नो इच्छा अनुसार रोजेर माल सामान वा सेवा खरिद गर्न पाउने खरिद गर्दा मूल्यमा

0: कार्यालय स्थानीय जनप्रतिनिधि वा टिकापुर नगरपालिकाको फोन नम्बर 091-560-384, 091-560-118 र उपभोक्ता हित संरक्षण उपशाखाको मोबाइल नम्बर 98-48-43-35-83 जानकारी गराउन हुन अनुरोध छ।
1: बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति टिकापुर नगरपालिका।

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप साम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मफे सुन्ती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टीकापुर प्राविधिक शिक्षालय के चमेना गृह में लापरवाही, चमेना गृह में सरल म्याद नागल खैना चीज भेटागिर। 5 वर्ष में बने पर्णा कर्णाली के तटबंध, 12 वर्ष समय 22 किलोमीटर के निर्माण। शिक्षा सचिव पौडेल से डॉक्टर केसी के संगे अनौपचारिक संवाद शुरू करने हो। प्रदेश सरकार गठन के विषय में नेकपा एमाले नेकपा बीच 3 बुदे सहमति। टीकापुर प्राविधिक शिक्षालय के चमेना गृह में संचालक से आपूर्ति करना खाद्य पदार्थ में गंभीर लापरवाही फैला पड़ल बा। शिक्षालय में अध्ययन करती रह विद्यार्थियों का खाना और खाजा में खैना चमेना गृह संचालक शमशेर बहादुर साउद सरल म्यार नांगल खैना चीज खुआती रह भेटागिल बा। शिक्षालय के विद्यार्थियों का हेलो सरकार में गुनासो करल पासे खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण कार्यालय धनगढ़ी के खाद्य अनुसंधान अधिकृत से शुक्रवार निरीक्षण करबेर संचालक साउट से गंभीर लापरवाही करल उपभोक्ता हुकरा स्वास्थ्य अवस्था में खिलवाड़ करल फैला पड़ल बा। शिक्षालय के भानसा में रलक आचार अवस्था का बेसन दाल गुंद्रुक में धूसी लागल हो। मूसन के खाइल म्याद नागल बिस्कुट सरसफाई के अवस्था हेरबेर भानसा ढेर फोहर समेत भेटागिल खाद्य अधिकृत आरती भत्ता जानकारी दिले बाट चमेना गृह संचालन हे समेत लापरवाही नै गर्न शर्तमा शिक्षालय के रोहबरमा धरके निर्देशन देहलो के हो। 2083 असार मसान्तमा ठेक्का सार्गिल मनो लौवा व्यक्ति छनौट नै हुला कोर्से कुछ दिन के लाख शिक्षालय की निगरानी खाद्य स्वच्छता कायम करके खाना खाजा खुवाइना शिक्षालय के निमित्त प्रमुख विकास राणा से प्रतिबद्धता जनाइल बाटे। चमेना गृह संचालन से गंभीर लापरवाही कर फेन कौन कार्रवाई नहीं करके पहल पटक निर्देशन दे के छोड़ल बा। सरल बिगड़ल अवस्था में रलक खाद्य सामग्री भर नष्ट करके खटहामा गार्गिल बा। चमेना गृह संचालन में संचालक भर धूसी परल ओ म्यार नांगल सामग्री छेगरी हुकरन खोइना कहती खटहामा नई पूरी फिरता मांगल रह। टीकापुर जानकी के विपज्जन्य विपद जोखिम में समेत रहल समुदाय स्तर के विपद कोष समेत गठन करगिल बा। कोष में केकरो वार्षिक ओ केकरो मासिक रूप में समेत रकम जमा करके विपद के समय में समस्या में परल हुकरन सहयोग करल बाटे। समुदाय में आपर्ना छोट छोट विपद की घटना पालिका तथा दाता हुकरन गुहारे नई परल कहके सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समिति से समुदाय में कोष बना के परिचालन करती रहलबा। जानकी गांव पालिका वार्ड नंबर 3 स्थित विपद व्यवस्थापन प्राथमिक उपचार कार्यदल संयोजक तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका मीना चौधरी समुदाय में विपद कोष बना के आवश्यक के 10,000 जमा हुई समस्या में पर्ल खुकरण सहयोग करना बताइल बा। टीकापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 7 बैदी सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष नरेन्द्र प्रसाद रेग्मी समुदाय में वार्षिक प्रति परिवार 250 के दर से जमा करना ऊ रकम के समेत विपद के समय में आपत में पर्ल खुकरण सुक्खा खाजा लगायत के काम में खर्च करना बताइल बा। जानकी गांव पालिका वार्ड नंबर 6 स्थित प्राथमिक उपचार कार्यदल के संयोजक दीपक देवी ने उपाने फे विपद कोष बना के सहज हुई बटोले बाटे। जानकी गांव पालिका वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख नेत्र प्रसाद जैसी सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समिति से समुदाय स्तर में नई कोष बनाईबेर छोट मोट समस्या समाधान केलक पालिका संगे मंगना क्रम समेत घटल विपद व्यवस्थापन में सहज हुई बटोले बाटे। प्राक्टिकल एक्शन बी ग्रुप ओ पालिका के साझेदारी में टीकापुर के 24 जानकी में 20 समुदाय स्तरीय समिति गठन रहल बा। वहां के क्षमता विकास में संस्था और पालिका से सहयोग करते आयल बा। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम पास फिर से सुनतिराबी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
2: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2083-84 में नया विद्यार्थी भर्ना का लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडीज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
2: आईसीटी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
1: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाईफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खाने पानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
1: कक्षा 12 पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088
1: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस टीकापुर कैलाली
3: टीकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
4: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको ब्यौरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ
3: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर
0: राजनैतिक स्थिरता सुशासन समृद्धि और प्रादेशिक विकासकी गति तीव्र पर्न नेकपा एमाले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बीच 3 बुँदे सहमति हुल्बा दुई पार्टी बीच प्रदेश सभामा सहकार्य गर्न औ संयुक्त सरकार गठन गर्न सहमति बनल्बा सहमति अनुसार संयुक्त सरकारमा कोशी बागमती हो लुम्बिनी प्रदेशकै नेतृत्व नेकपा एमाले तथा कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेशकै नेतृत्वमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी से गर्न कहलबा मधेसो गण्डकी प्रदेश सरकार गठनकै सन्दर्भमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्न और राजनीतिक दल हुकनसँग समेत परामर्श गरके सरकारकै नेतृत्व सहभागिताकै स्वरूप तय गर्न सहमति जुटल संयोजक दाहाल केशोकीय सचिव गोविन्द आचार्य जानकारी दिलेबाटै कर्णाली प्रदेशकै मुख्यमन्त्री एमलाल कडेल राजीनामा देहलबाटै कालिक बैठक प्रदेश सभाकै बैठकै सम्बोधन गर्दै वहाँ पद से राजीनामा देहल घोषणा गरेकै हो नेपाली कंग्रेस हो नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी से ऊ विरूद्ध के असार 32 गते अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता कराएल है अविश्वास के प्रस्ताव में कालिक दोपहर के बैठल प्रदेश सभा के बैठक में छलफल हुई कार्यतालिका अनुसार विश्वास के मत पैना संभावना नहीं हिल पाछे मुख्यमंत्री कड़ेल पद से राजीनामा देहल के हई कर्णाली लडिया कटानमा नियन्त्रण हो बाढ़ रोकथाम व्यवस्थापनकै काम 5 वर्ष भित्र गर्न लक्ष्य रहेन 12 वर्ष बिटसेकले सफेन सम्पन्न हुई निसेकल हो साबेकी कर्णाली लडिया नियन्त्रण व्यवस्थापन आयोजना राजापुर हाल सिंचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना से 5 वर्षसम्म करेपर्ना 71 किलोमिटर टर्बन मध्ये 12 वर्षसम्म करिब 22 किलोमिटर के निर्माण करलबा 2071 फागुन 15 तत्कालीन सिंचाई मन्त्री एमपी साउंड के आयोजना के उद्घाटन करल रहें। गुरु योजना अनुसार कर्णालियो यकर और बाही गेरुआ लदिया में फिर तटबंध पूर्ण रूप में संपन्न करकलाक 12,80,74,00,000 रूपया बजेट स्वीकृत हुई रह। कर्णाली लदिया नियंत्रण आयोजना अंतर्गत 5 वर्ष भीतर 71 किलोमीटर तटबंध निर्माण संपन्न करपना योजना सुस्त गति से काम होती रहल बा। सरकार से सुशासन ओ सेवा प्रवाह प्रविधि मैत्री बनाईना ऑनलाइन प्रणाली मन से कर्मचारी सरुआ शुरू करल बा। यह अनुसार 1,750 जाने कर्मचारी से ऑनलाइन प्रणाली मन से सरुआ के लग आवेदन देहल बाटे। विगत लंबा समय से बाझल कर्मचारी सरुआ बेथिति अंत्य कर सरकार से प्रभावकारी पूर्ण रूप में डिजिटल मैत्री बनाईना कहल बा। ई कार्यान्वयन में ऑनलाइन सरुआ प्रणाली मन से नई भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय में निवेदन देना शुरू हुई बा। मंत्रालय में ऑनलाइन प्रणाली मन से सरुआ करकलाग निवेदन देना कर्मचारी उपकरण के संख्या 1,750 पुगल मंत्रालय से जनायल बा। खोज खबर माया घड़ी विश्राम विश्राम पाछे फिर से भी सुनते रहिए सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
2: मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलिसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च नवीकरण तथा नयाँ दर्ता बारे अत्यन्त जरूरी सूचना।
3: टीकापुर नगरपालिकाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलिसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 तोके बमोजिम उपचार बापत खर्च प्राप्त गरिरहेका लाभग्राही तथा नयाँ लाभग्राहीहरूले आर्थिक वर्ष 2083-84 उक्त उपचार बापत खर्च प्राप्त गर्नका निम्ति तपसिल बमोजिमका कागजात सहित यही श्रावण 5 गतेदेखि भाद्र 5 गतेसम्म लाभग्राही स्वयं वा निजको निवेदन सहित नजिकका हकदार उपस्थित भई आफ्नो परिचय पत्र नवीकरण तथा नयाँ दर्ता गराउनका लागि टीकापुर नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।
2: तपसिल
3: सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूको सक्कल नेपाली नागरिकता र 1 प्रति फोटोकपी,
2: बैंकको सक्कल चेकबुक र 1 प्रति फोटोकपी।
3: मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको हकमा नगरपालिकाले जारी गरेको अपाङ्गताको परिचय पत्र।
2: नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रतिलिपि, हालसालै खिचेको फोटो 2 प्रति।
3: क्यान्सर रोगीहरूको हकमा 3-3 महिना भित्र निरन्तर निगरानीमा रहेको प्रमाण पत्र खुल्ने कागजात र वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र।
2: थप जानकारीका लागि जनस्वास्थ्य शाखाको फोन नम्बर 091-560-122 सम्पर्क गर्नुहोला।
3: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
5: के तपाईलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
6: ग्रीष्मा टेरेसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ब्याग, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टीकापुर कैराली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849-85-18-08।
7: बाबु ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
8: मै नै जाइ, उहाँ अपन अनुहार बिगर के घर से बाहर नै निकर्छु।
7: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
8: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं, टप टू में अब भी जाए।
0: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाँत खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846777417। विश्राम पास फिर से स्वागत बा। शिक्षा तथा युवा खेलकूद मंत्रालय के सचिव चुडामणि पौडेल अनशन करती रहल डाक्टर गोविन्द केसी संगे सहमति गेलक संवाद शुरू करल बताई गेल बा। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरियाल संगे समन्वय में वार्ता तथा संवाद मार्फत समाधान खोजना उद्देश्य से धनगढ़ी पुगलक सचिव पौडेल शनिचर के नई डाक्टर केसी संगे वहां उपचाररत सेती प्रादेशिक अस्पताल पुगके भेट करल हैं। उक्रम में डाक्टर केसी हो ओकर पास से वहां के सहयोगी हुकन संगे अनौपचारिक संवाद करके धारणा बनाइल बाटे। अटवार के भर वहां उठाइल माग के औपचारिक संवाद फिना सचिव पौडेल जानकारी दिले बाटे। परीक्षा के समेत प्रश्न पत्र बाहर आयल विषय है लेके देशभर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन चर्काएल पासे भारत के केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से पदमन से राजीनामा दिल बाटे। शनिचर के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संबोधन करती वहां आपन राजीनामा पत्र बुझाएल के हैं। युवा तथा विद्यार्थी उकरण के नेतृत्व रलक कॉकरोच जनता पार्टी से तमाम विद्यार्थी संगठन और विपक्षी दल उकरण लगातार विरोध प्रदर्शन करल पाछे वहां के राजीनामा अले खो आंदोलनरत से पक्ष प्रधानमंत्री हे समेत केन्द्रीय मंत्री परिषद से हटाए पर्ना मुख्य मार्ग धरते आयल बा। देश के युवा तथा विद्यार्थी उकरण के भावना न्यायचित अपेक्षा के सम्मान करती राजीनामा दे के प्रधान से समेत उल्लेख करगिल टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर लिखल बा। ये समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से टीकापुर प्राविधिक शिक्षालय के चमेना गृह के लापरवाही चमेना गृह में सरल म्याद गुजरल खैना चीज भेटा गिल टीकापुर जानकी में बाढ़जन्य विपट जोखिम में रलक समुदाय में समेत समुदाय स्तरीय विपट कोष गठन विपट में छोटमोट समस्या तर्न सहज हो पांच वर्ष में बने पर्ना कर्णाली के तटबन्ध 12 वर्ष सन 22 किलोमीटर के बन लिटा बकलत थारू भाषक खोज खबर अत्र और समाचार 12 बजे मध्यान खबर सुन सकबी। अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनते रह राम राम।

0: अच्छा छ साँप कुछ नि कराइल साँप कुछ नि करत ल्या ऊ अपने चल गेल कुछ कराइल त ओ सक्कु साँप बिखा थे नि
1: बिखा हो कि नि हो कसी कति हिँडा त दाई
2: ल्या नेपालमा पाँच दिना बिखा साँपनको विषयमा सुन एक ठोरठ गरैछ जौन खास कैख रातिक समयमा घर भित्र पैठ सेक्ठ यी कटलसे निबठाई फे स्याकत तर कटलक पाछ देही भाग जो निचलना कैख सास ठ्यार जो निसेकना मेसे लक्क होइ सेक्ठ औरो रठ डोम जौन बडा रिसाहा मेरिक रठ निकर फाँट फुलेठ डोम साँप दिन वा रात दुनुमा डेक पर्ना ओ खास कैख सन्ध्या बिहान डेक पर्छ निकर कटलसे फे लक्क होइ सेक्ठ ओ औरो रठ कैली जातक साँप निकर कटल कलसे कटलक भाग सुई था ओ बरा कर से बठे था रकत फे पाती होकर रकत बहना हुई से था ओसय का हमार देशक तराई सक्कु भूभाग में पा देना बगोपने न फुनका रना बाघे सांप ई सांप दसलक बेरहमेन कम खेल पा दे था तर हिंक न कटाई एकदम खतरनाक रहा
3: बर्खा छा को अनाज बिग्रिना समय में सापन का कटाई अथवा जसाई का घटना झूल बिना कथा बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप का कारण सापन का बचारा नाशिदेल सापन का जसाई का घटना झूल बिना कर लग पा जाए
4: झूल जसिन सापन का दसाई हानिकारक नी रहा वह फिर यदि सपा दस डाल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
0: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पट्टा लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिहे सक्दै था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: बुका पिए रही था, कभी पेंसिल रही था, कभी झोले फटाका आज था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई, कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था, कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल ले रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कही एक आनल झोला दस का टस बाटिन, ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी।
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: पंछी पालन व्यवसायहरूका लागि जरूरी सूचना बर्ड फ्लू H5N1 पंछीमा लाग्ने उच्च मृत्युदर भएको संक्रामक रोग हो विगत 3 महिनादेखि देशका विभिन्न स्थानमा यो रोग देखा परिरहेको छ पशु सेवा विभागबाट सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्यमा रोग नियन्त्रणका प्रयासहरू भइरहेका छन् तसर्थ पंछीपालक कृषक व्यवसायीहरूले रोगको संक्रमणबाट बच्न एवं रोग नियन्त्रणमा सहयोग गर्न निम्न कुराहरूको पालना गर्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछौ फार्म परिसरमा जैविक सुरक्षाका विधिहरू अवलम्बन गर्ने अण्डा राख्ने पुरानो कागजको क्रेट पुनः प्रयोगमा नल्याउने तथा ढुवानीको साधनलाई फार्म परिसरभित्र ल्याउनु पर्ने भएमा पूर्ण रूपमा निसंक्रमण गरेर मात्र भित्र्याउने काग लगायतका जंगली पंक्षीसँग घरेलु पंक्षी तथा पंक्षीको दाना लसपस हुन नदिने गरी थुनेर राख्ने पंक्षी तथा पंक्षीजन्य उत्पादनको ओसार पसार गर्दा अनिवार्य रूपमा भेटेरिनरी प्रमाणपत्र लिएर मात्र गर्ने कुनै पनि पंक्षी फार्म वा बिक्री स्थलमा अस्वाभाविक रूपमा धेरै संख्यामा पंक्षी बिरामी परेमा वा मरेमा तुरन्त नजिकैको पशु सेवाका निकायमा जानकारी गर्ने र बिरामी वा मरेका पंक्षीको मासु बिक्री सेवन नगर्नु हुन अनुरोध गर्दै यो रोग नियन्त्रणमा सहयोगको लागि सबै सरकारवालाहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं रानी जमरा कुलरिया सिटिङ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सधैं भरिलाई।
1: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरमहेन जानकारी कराईटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरमहे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फैले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।

0: कब्बू का पी रही था, कब्बू पेंसिल ले रही था, कब्बू झोले फटाका आज कहा कना हो बाबा के ओष्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बरती रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकरा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब ही जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417
0: चंडी माई स्वास्थ्य क्लिनिक टीकापुर में
4: यही साउन 16 गते तेसरो शनिवार का दिन
0: कोहलपुर मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ मानसिक लागू औषध तथा नशा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहन बेलवासे MBBS MD बिरामी जांच गर्न चंडी माई स्वास्थ्य क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ
5: दिने सेवाहरू बेला बेला में मुटु ढुकढुक हुने हाथ खुट्टा काट्ने या चिसो हुने धेरै पसिना आउने मन में छटपटी हुने ज्यादै झस्कने तर्सने या डराउने भएमा
0: असामान्य रूप में धेरै लामो समयसम्म को दुखी रहेमा
5: बढी रिसाउने झिजो मान्ने झर्कने जीव दुख्ने दुब्लाउने निन्द्रा नलाग्ने भोक नलाग्ने भएमा
0: काम काजमा मन नलाग्ने त्यसै दिक्क मानेर बस्ने भएमा
5: असामान्य रूपमा एउटै कार्य बारम्बार दोहोर्याउने भएमा
0: धेरै रक्सी खाने वा लागू पदार्थको सेवन गर्ने भएमा
5: आत्महत्या गर्ने इच्छा उत्पन्न हुने तथा आत्महत्याको प्रयास गरेमा
0: याद गर्नुहोस् है
5: यदि यस्ता लक्षणहरू मध्ये कुनै एक लक्षण मात्र पनि धेरै लामो समयसम्म लगातार देखा परेमा यसले कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक रोग लागेको हुन सक्ने संकेत गर्दछ
0: त्यसैले सम्बन्धित बिरामीहरूले नाम दर्ता गराई ढुक्क हुनुहोस्
4: डाक्टर आउने दिन साउन 16 गते तेस्रो शनिवार
0: स्थान चण्डीमाई स्वास्थ्य क्लिनिक सम्पर्क मोबाइल नम्बर 091-560-856 र 98-580-29700

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दे भुवा जागिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
1: अधि गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटास तरह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाकर आन्छे कि कत्रा सुघर बनाकर लबाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भाटवट खाई आऊ जाइका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864841208 और 9846239261
2: आओ
3: आओ तू पहले चाइना मत झील कर दो संजू कुछ समस्या तो नहीं हुई
2: कुछ नहीं हुई सर टॉयलेट के अंदर आप रख लू सर लग के घूमक रहते हूँ जैसे चेयर सर लग में हलचल नहीं करें मोर सपो के था पहनो तो पहला जाके
3: मोर सपो है ना चलेना तो नहीं चलेगा ना
2: नहीं चलेगा सर
3: विद्यार्थी भैया बाबू पूरा ग्रह से कहो मोर सपो देव गोपाल से भैया ना चलाए नहीं बिठा सपो मूला से भी वाकर मरहल 20 असर नहीं करत कना नहीं हो जीती हाँ मोर सपा मोल देख पड़ना सपो है ना
4: मुलक कुछ बेर बासी सपुआ दस सिक्ठा संभव हुई सम सबको फोटो खींची व पहचान कला विज्ञापन से संपर्क करी
5: सर्पदंश से संबंधी भर पर्द व सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकी पता लगाई लाख आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org में सेव दिखा
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: का सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा क टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
1: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
2: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

0: बुका पिरै ठक बिपेन सिलेरै ठक बु झनै फटाका आजि ठक का कना हो बाबा फि ओष्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झ्वाला आनला से त लड़का सामान निहरै
1: ओहो इ बुढा लिखबे का हुई थी जलम भर भर बरैति रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कै ठक कबु पेन्सिल हेरा कै ठक कबु झनै फटाका ठक बढ़िया ठाउँ से झ्वाला लाना नि छिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो ओटा कहाँ टीकापुर म रलक रडगैया झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दिदी कटरास गोर झ्वाला आनला बाटी ना कबु लड़का कहाँ पिहरै थी ना कबू पेंसिल रहीन ना झोला फाटल हुईन कैक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: टीकापुर नगर पालिका को सूचना
4: टीकापुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन 2078 बमोजिम कर तिरी नगरको विकास निर्माणमा सहभागी बनाऊ
3: नगरपालिका कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर चुक्ता नगरे नगरपालिकाबाट प्रवाह गरिने कुनै पनि सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नगरपालिका कार्यालय बाध्य हुने छैन
4: कर तिर्नु सबै नगरवासीको कर्तव्य हो भने सेवा प्राप्त गर्नु अधिकार हो
3: त्यसैले कर तिरौं सभ्य र जिम्मेवारी नागरिकको परिचय दिऊ
4: समयमै कर तिरौं जरिवानाबाट बचौं
3: कर सम्बन्धी विस्तृत जानकारीका लागि टीकापुर नगरपालिकाको कार्यालय राजस्व उपशाखाको फोन नम्बर 091-560-883 सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ
4: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली
5: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछौ छोरी
6: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुहोस् न लाउन कस्तो रहर लाछ
5: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले
6: मेरो खुत्रके छ नि आमा मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सकियो नि
5: कुरा राम्रै हो छोरी तर कसकोमा जाने हो त
6: न्यू असम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ अस्ति नै हेरिसके मैले त
7: न्यू असम जालपा देवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टीकापुर न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गरगहनाहरू माइली तिलहरी हार झुम्का छड्के तिलहरी बाला चुरा चन्द्रमा जन्तर चन्द्रहार इन्डियन मंगलसूत्र औठी सिक्री बिनारसनका गरगहनाहरू पाइन्छन् साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन् अछाम मंगलसैनको शाखा टीकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार फोन नम्बर 98-688-14-799 98-24-60-25-32 अछाम मंगलसैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार गोपाल सुनार फोन नम्बर 98-24-67-28-25

मोबाइल सम्रपात्र ओ नेपाली पात्र म फिसुन्टी हलबाटी खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से ओडाईसी विपद व्यवस्थापन समिति की विपद जोखिम निधिकरण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम बैटरी ट्राफिक प्रहरी करल 12,98,000 राजस्व संकलन कर्णालीमा औरा सरकार गठन नहुसम्म मौजूदा मन्त्री परिषद कार्य सञ्चालन गर्न उप प्रवासी नेपाली मातृभूमिकी विकासकी निम्ति लगानी गर्न अर्थमन्त्रीकी आग्रह

0: ওড়া স্তরে বিপদ ব্যবস্থাপন পুরা খবর ওড়া স্তরে বিপদ ব্যবস্থাপন সমিতি কে বিপদ জোখিম নিরীকরণ তথা জলবায়ু পরিবর্তন সম্বন্ধী অভিমুখীকরণ কার্যক্রম হইবা প্রাকটিক্যাল একশন ও বি গ্রুপ কে সমুদায় কেলাক জলবায়ু উত্থানশীল কার্যক্রম কে সংযোজক হেমন্তরাজ যোশী বিপদ জোখিম নিরীকরণ ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্বন্ধী নীতিগত ব্যবস্থা বারে জানকারী দেনা খোঁজ তথা উদ্ধার সামগ্রী কে প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপন বারে শিখাইনা স্থানীয় স্তরমা পূর্ব সূচনা প্রণালী বরিয়া বীমা সম্বন্ধী জানকারী দেনা কার্যক্রম কলক জানকারী দেলাবাট সমুদায় কেলাক জলবায়ু উত্থানশীল কার্যক্রম টিকাপুর সহিত কৈলালী কে তিন ও বর্দিয়া কে পাঁচ পাড়িকা চালিশ সমুদায় সঞ্চালন বা কার্যক্রম কে পূর্ব তৈয়ারী প্রাথমিকতা দেখে কাম করতে রহল পূর্ব সূচনা প্রণালী সক্রিয় বৈনা সঘিনা কলবাট কার্যক্রম টিকাপুর নৌ কে ওড়া স্তরে বিপদ ব্যবস্থাপন কে সমিতি পদাধিকারী সহভাগী রহি টিকাপুর নগরপালিকা কে বন বাতাবরণ তথা বিপদ ব্যবস্থাপন শাখা প্রমুখ নির্মলা চৌধুরী বি গ্রুপ সমুদায় সামগ্রী উপলব্ধ করলক সামগ্রী প্রয়োগ বারে ক্ষমতা অভিবৃদ্ধি কলাক কার্যক্রম করলক সহসুনা বটেল বাটি সামুদায়িক বিপদ ব্যবস্থাপন সমিতি বৈদিকে ভোচরা টুঙ্গানা বরিয়া প্রভাবিত ক্ষেত্রকে বাসিন্দা সিনখালে অভিমুখীকরণ বিপদ ব্যবস্থান সহসুনা বটেল বাট बटड़ी ट्राफिक प्रहरी 1508 जना सवारी नियम उल्लंघनकर्ता मथि रू 12,98,000 राजस्व संकलन कलबा यह रकम गत आर्थिक वर्ष में संकलन करगिल रह निवास 754 जीप कार भ्यान 91 ट्रैक्टर 351 मोटरसाइकिल ओ 123 टेम्पो चालक कार्यवाही करलबा गत आर्थिक वर्ष में उक्त जिला में 62 सवारी साधन दुर्घटना में पलक तथा 34 जना की मृत्यु हुलक जानकारी दी वहां 176 जना घाइते हुलक बोटेलबाट खोज खबर में विश्राम विश्राम पास फिर से विश्व त्रिवी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो
2: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2083-84 में नया विद्यार्थी भर्ना का लागि प्रवेश आवेदन फार्म वितरण भइरहेको ब्यौरा संबंधित सबै का लागि जानकारी गराइन्छ
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फ का शैक्षिक कार्यक्रम
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
1: प्रवेश परीक्षा संचालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडीज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
2: आईसीटी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
1: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाईफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खानेपानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
1: कक्षा 12 पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088
1: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस टिकापुर कैलाली
3: के तपाईलाई थाहा छ
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष

0: ser un sàtir.
1: विश्राम पाछा फिर से स्वागत बा। शनिवार संजय चालक सहित भोटे कोशी में खसलक विद्युतीय सवारी साधनों वाकर चालक के खोजी में परिचालन मिलक सुरक्षाकर्मी सलाह दिना गृहमती सुदन गुरू घटनास्थल में पुग्नबाट प्रमुख जिलाधिकारी नरेन्द्र परियार के अनुसार स्थलगत निरीक्षण पाछा 10 ठौर डोरन सहित 3 ठौर सुरक्षा निकाय के कर्मचारी गोटा खोरके संघ चालक कालिका गौपालिका 3 तर धारापानी के 22 वर्षीय सविन तामाङ खोजी में परिचालन मिलवा। जिला विपद व्यवस्थापन समिति खोज तथा उद्धार के समन्वय कर्तृदलबाट दुर्घटनास्थल गहिरो खोज ढुंगिल पानी नदिया किनार के विशाल चट्टान के खोजी तथा उद्धार में चुनौती थपक समिति जनेलवा। प्रदेश प्रमुख एगराज जोशी और मंत्री परिषद गठन नहुसम्म केलाग वर्तमान मंत्री परिषद नै कार्य संचालन करना करके जिम्मेवारी तोक्लबाट प्रदेश

पलबाट लगानीकै प्रतिफल भए सहज रूपमा फिर्ता लैदिन सिक्न अर्थमन्त्री स्पष्ट पलबाट। अर्थमन्त्री के कहे, हाम्रा सरकारकै तर्फमा से एनआरए एनए बन्ड अफसोर बन्ड वैकल्पिक वित्त परिचालन जसिन रूपान्तरणकारी अवधारणा आघसलग नेपालमा भूगोलकेलाग लगानी विस्तारमा लगलग कैके बोटेलोबाट। यही समाचार सँग खोज खबर वराई दिनासी पहिले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फेर सेक्छु। पढाइस्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिकी विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी बटेबी ट्राफिक प्रहरीकरण 12,98,000 राजस्व संकलन। कर्णालीमा अरू सरकार गठन नहुँसम्म मौजूदा मन्त्री परिषद कार्य सञ्चालन गर्न। प्रवासी नेपाली मातृभूमिकी विकास के निम्त लगानी गर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह। प्राविधिक मित्र दिपेन्द्र भट्टराई धन्यवाद देखिए। अब खोज खबर से मिता चौधरी विदाई दू। यहां पास 6 बजे की खोज खबर सुनना सिंह भी सामुदायिक रेडियो टीका प्रयासन सुनती रवि राम राम।

0: नहीं कमल सर।
1: आओ आओ, तू पायलट से आई ना माता झील कर दो था संजू, कुछ समस्या तो नहीं हुई?
0: कुछ नहीं हुई सर, पायलट के 15 सफा रखना, सर लग के घूमत रहते हूँ, कैसे सर लग में तो हलचल नहीं करना, मोर सपो का किठा पहनो तो पायलट जाके।
1: मोर सपो है ना चलेना तो नहीं चलेगा ना?
0: नहीं चलेगा सर।
1: विद्यार्थी भैया बाबू पूरा सुरह से कह रहा हूँ, मोर सपो देखो कल से भैया ना चलाए नहीं बिठा तपो मूला से भी वाकर में रह बीस असर नहीं करत खाना नहीं हो जीती हाँ मुआल सप्पा मुआल और देख पड़ना सप्पा है ना नम तो हाँ सारे पकड़ा नहीं भी
0: सर नौ सप्पा देखना से आ करना
1: सप्पा मुआल और देख पड़ना से थे जात से मुआल नहीं रह सकत अथवा मुला कुछ देर पास असम थे सप्पा दस सकत वह वर्ष से मुआल अवस्था में थे सप्पा हाथ से चलाए नहीं भी बेन तो निक नम्मा लच्छी ले चला था मुआल नहीं मुआल कही था जाना से भी था
2: मुआल सरपंच से सावधान रही मुआलवा मार गई सप्पा होना पकड़ना व खेलेना जिन करी मुलक कुछ बेर बासा संकी सप्पा दस से था संभव हुई सम सबको फोटो खींची व पहचान के लायक विज्ञापन से संपर्क करी
3: सर्पदंश से संबंधित भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकी पता लगाई लाख आधिकारिक वेबसाइट www.snakebitenepal.org में ल्याएर सेट दिथा
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्टफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहो र घूम जाए तो था पाए
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848143426।

0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
1: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि, सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
2: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
3: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिप्पर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमराफारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
1: सम्पर्क नम्बर 091-560-470 र मोबाइल नम्बर 98-48-57-18-28।
4: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे ग्वज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइना उनी ना पट्टा नि पैना त
5: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आतु कहाँ बनाऊ
4: तुहार बाटा स्तर तुहार रामपुरान दिदी ये नि सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान से के कतरा सुगर बना कान लबाटी
5: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई और जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टिकापुर, प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार।
4: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए, रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए, वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 98-684-41-208 और 98-486-39-261।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था रिलायबल लाइफ सदै भरिलाई।
1: कार्यक्रम छोट मीट साता के बुधवार दिन के एक बजे से अपने उगन थारु भाषा के कोई गीत मन परत
2: जब देखनो तो हिन है।
1: यदि मन परत के कले से अपन मन सुनेना चाहती कले से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत गीत के बोल बताई। गीत मन परना के दुई ठो कारण वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई और अंतिम में एक जन के नाम अनिवार्य ले दी। कले से हमारे गीत अपने पक्के से सुना तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 0915612655 साता के बुधवार दिन के एक बजे जरूर डायल करे हुई। कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में सुने ना बिस्तरी मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में।

0: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वा नन्दी गुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उने ना पट्टा नि पैना त
1: अधि गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तरह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बनाका आन्छे के कतरा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जाइका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊं वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: टीकापुर को विकास का लागि के गर्दैछ नगरपालिका
5: नगर विकास का लागि नगरवासी को दायित्व के हुनु पर्छ
6: नगर विकासमा नागरिकको सहभागिता कसरी बढाउने र नगरपालिकाको काम कारबाही र सेवा प्रभाव बारे जानकारी दिने कार्यक्रम हाम्रो टीकापुर
4: टीकापुर नगर कार्यपालिकाको सहयोगमा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमको उत्पादन कार्यक्रम हाम्रो टीकापुर हरेक साताको बिहिबार बिहान 7:30 बजे र पुनः प्रसारण
7: बिहिबार दिउँसो 3 बजे सुन्न सक्नुहुनेछ।

0: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर जैब? पाछा से शुरू करल मने घर सिजार सेकल।
1: अरे का करू री बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का?
0: मिस्तरान बर्जनाऊ का ना घर हेरो ना, पटा सुगुर बनेला बाट। आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना, कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436।
3: बीतल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमंत स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराईटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जाना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 0915600595 ओ मोबाइल नंबर 9842423।

0: बुका पी रही था, कभी पेंसिल ले रही था, कभी झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के ओष्ट पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला अनला से तो लड़का सामान निहरे।
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला अनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन, ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में, रत गैया झोला उद्योग, हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: का हुई कमल आयने बुक खाई बाट उठा
1: एरी ने काका काई फुला टूरे बारी में गेल रही तपो काट दे बीस निकाल देवी की कई के लेके आयल बाटू
0: सब कटलक बीस तक उपचार करो तो सर्वदम से उपचार केंद्र में ले जाए पठा कहूँ कमल भाई वहाँ दक्ष तथा तारीम प्राप्त चिकित्सक हूँ दिखा सब कटलक हो कि नहीं हो के पट्टा लगा कर सर्वदम से उपचार में प्रयोग है ना एंटी वेनम से उपचार कर
1: सर्पदंग से उपचार केंद्र के विषय में मैं फिर सुनल तो रहूं तर
0: कुछ दिन कही आना तुरंत उपचार केंद्र ले जा रही नेपाल सरकार सर्पदंशक उपचार कर एंटी वेनम समेत निःशुल्क उपलब्ध करे था हत्या चिंता नहीं पड़त
1: भाई ना तब ना तुम कुछ फिर नहीं हुई मैं एम्बुलेंस आना फोन कर सकली बात
0: एम्बुलेंस आपूंगा समय लागत के था मर छा संदेश मोटरसाइकिल में बैठा कर तुहन उपचार केंद्र में ले जा दी रे बाबू संदेश बाहर आता
2: सर्पदंश प्रभावित जिला में बेरमेन का समय में जो उपचार के खा जैन जोगिना उद्देश्य ले सर्पदंश उपचार केंद्र संचालन में बा ई उपचार केंद्र में सर्पदंशक उपचार निःशुल्क हुई था सापन का कटाई ले मनन का मृत्यु न हो सरकार सर्पदंश उपचार में प्रयोग होना एंटी वेनम निःशुल्क उपलब्ध करे लबा आपन लखरहल सर्पदंश उपचार केंद्र संपर्क नंबर ठहर लड़ा पठा सर्पदंश संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाक पता लगाई लाख आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org में हेर सेटा
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश